वीडियो ढिलों वीडियो 1980 तो पंजाबी कम्युनिटी दे विच हाजर है गोर रोड एंड एबनीजर ते लोकेटेड ने IPTV अते गुरबानी रेडियो दिया सर्विसेज दे लई भावे तुसी 4K IPTV सुपर फास्ट अल्ट्रा हाई डेफिनेशन बॉक्स लेना या थोड़े कोल बॉक्स हैगा पर तुसी ढिलों वीडियो दे कस्टमर बनना चाहुंदे हो नो बफरिंग नो फ्रीजिंग 4K सर्विस लई पुराना बॉक्स कदे भी अपग्रेड अपडेट करवाओ तुसी ढिलों वीडियो नु कॉल करो मेन प्रोडक्ट ढिलों वीडियो दा गुरबानी रेडियो इंडिया लेके जाण वास्ते बेस्ट गिफ्ट जिस विच संपूर्ण पाठ हैगा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा नितनेम दिया सारिया बाणिया ने ढाडी वारा ने 300 शब्द ने 110-220 दा चार्जर अते ईयर प्लग दे नाल नाल 20 घंटे दी बैटरी टोरंटो एयरपोर्ट तो लेके थोड़े पिंड तक दा थोड़ा साथी ढिलों वीडियो दा गुरबानी रेडियो IPTV दी स्टॉप दी सर्विस या ढिलों वीडियो गुरबानी रेडियो गो रोड एबनीजर 7 दिन खुले ने 11 तो 8 905-204-1313 905-204-1313 किसी ने भी अगर कार वैन SUV लेना टॉप टॉप टॉप का नाम एक है वह है एरन मिल्स एक्यूरा। एरन मिल्स एक्यूरा दे जगदीप भला अते करण शर्मा नू कॉल करो नंबर वन सर्विस नंबर वन रेट्स प्रोफेशनल अते ऑनेस्ट टीम ते रिलायबल सो कार वैन SUV कोई भी लेना होवे एरन मिल्स एक्यूरा 905-828-5800 905-828

सावण सरसे कामणे चरण कमल से ओ प्यार मन तन रत्ता सच रंग इको नाम आधार सावण सरसे कामणे चरण कमल से ओ प्यार

0: शादी दी मूवी बनवाने ली या रिंग सेरेमनी ली वेडिंग एनिवर्सरी जागो प्री वेडिंग बर्थडे और एनी इवेंट दी वधिया वीडियोग्राफी ते फोटोग्राफ शूट कर ली याद रखो देसी सिनेमैटिक फिल्म अपने हाई एंड इक्विपमेंट्स ते क्रिएटिव आइडियाज दे नाल बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड कर देने बुकिंग ले आज ही कॉल करो जगदीश सिंह नो 416-930-1251 416-930-1251
1: चंगा ट्रक ते वधिया जॉब लैण लई कित्थे जावां
2: तां फिर तू क्वालिटी लॉजिस्टिक क्वालिटी ट्रक सेल वालियां कोल जा
1: 12 महीने कम पाओ
2: ते नाले चंगे डॉलर कमाओ
0: क्वालिटी लॉजिस्टिक इंक जिन्हां नूं पाल है काबिल ते ईमानदार ट्रक ड्राइवर्स ट्राला ड्राइवर्स ते ओनर ऑपरेटर्स दी वधेरे जानकारी लई क्वालिटी लॉजिस्टिक इंक दे जसवीर होरां नूं कॉल करो
3: 416-717-2929
0: 416-717-2929 क्वालिटी लॉजिस्टिक इंक 14 स्टेनवे बुलेवर्ड यूनिट 4 इटोबिको
4: मिलना इवेंट्स लेके आ रहे ने तुहाटे वास्ते रू का सफर टूर जी हाँ लाइव मास्टर सलीम कॉन्सर्ट इन टोरंटो 24 जुलाई नो मिसिसागा कन्वेंशन सेंटर दे विच सिर्फ से सिर्फ मिलना इवेंट्स दे नाल ता फिर देर किस गल दी तारीख नोट कर लो 24 जुलाई अपनी टिकटा आज ही बुक करो लॉग ऑन करो www.milnatickets.com ते स्पॉन्सरशिप अते होर किसी भी जानकारी लई तुसी रोहन शर्मा अते प्रब संधु नु कॉल कर सकदे हो 647-783-9873 या 437-870-0001 ते

0: सर्दी च हीट नहीं चलदी ते गर्मी च एसी।
1: ले आपा हुणे करदे आ संधू साहब नाल गल ते करदे आ मसले दा हल।
0: एसी फर्नेस गैस लाइन वाटर हीटर या ह्यूमिडिफायर सर्विस या इंस्टॉलेशन नव एयर कंफर्ट ते जतिंदर संधू नु कॉल लाओ ते लाइफ च कंफर्ट पाओ। कॉल 647-706-6640
1: 647-706-6640।
2: पाजी अज करे तंदूरी बनाओ पर जो स्वाद तंदूरी बॉयज दे आउणा ओ करे नहीं बन पाउणा।
3: हाय गाइस एंजॉय करो तंदूरी बॉयज वेज नॉन वेज स्वादले तंदूरी खाने ले पहुंचो तंदूरी बॉयज।
4: सांझा विरसा रेडियो दा रेफरेंस देन ते पाओ 10% डिस्काउंट। पार्ट जागो अते वेडिंग ले आज ही कैटरिंग बुक करो 9059562111 9054519200 सर्विंग यू फ्रॉम 3 लोकेशंस।

0: 7997877 थैंक यू जी।
1: ओए ट्रक काला लिया जदों वेखो एदियां कमानियां इटलियां रहंदियां की करा
2: मैं सुनया जी अपने पंजाबी भरावां जे अते गैरी ने खोल दित्ती है GTA विच ट्रकां दे स्प्रिंगां दी पहली शॉप PNJ स्प्रिंग व्हील अलाइनमेंट
3: पहुंचो 5330 ब्रेडको बुलेवर्ड मिसीसागा मेन इंटरसेक्शन डिक्सी एंड मैथसन
4: इत्थे पी लाइन लेजर मशीनां नाल अलाइनमेंट ते नवे स्टाइल दीआं मशीनां नाल बैलेंसिंग कीती जांदी है इन्ना ही नहीं 4 व्हीलर्स अते 18 व्हीलर्स दे टायर्स दा खास प्रबंध वी है जे तुसीं ट्रकां ते ट्रेलरां दी कमानियां दा तसल्ली बख्श काम करवाना चाहुंदे हो
2: कॉल करो जे एंड गैरी नूं
4: 905-459-5533
2: 905-459-5533 ते
4: PNJ स्प्रिंग व्हील अलाइनमेंट
5: टीम फोर एंटरटेनमेंट पेश करदे ने पंजाबी विरसा 2026
6: ओए सावण चढ़िया ती
5: टोरंटो शो सैटरडे 25 जुलाई नूं
6: दुनिया मेले जांदी
5: थिएटर एट ग्रेट कैनेडियन टोरंटो।

0: Entertainment 647-400-6862-416-303-4444. ये तो शो नो मिस करना चाहोगे?
1: ट्रक एक्सीडेंट ते रब ने हाथ देके बचा लिया
2: ते कार दे खर्चिया नु हरजीत जंजुआ दी डिसेबिलिटी इंश्योरेंस ने संभालिया अपने भविष्य नु सुरक्षा करन ते प्रेजेंट दे पीस ऑफ माइंड ले आज ही संपर्क करो हरजीत सिंह जंजुआ
1: हर तरह दी वधिया इंश्योरेंस पॉलिसी ले याद रखो इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट हरजीत जंजुआ दा नाम लाइफ इंश्योरेंस डिसेबिलिटी क्रिटिकल इंश्योरेंस सुपर वीजा इंश्योरेंस विजिटर इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस किड्स प्लान RRSP RESP TFSA कॉल करो
3: 6478 3 5 5 2 9 4 6 4 7 8 3 5 5 2 9 4 ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

0: sun, jump our sons, do our sons, happy sons, not it, hoosie be sons, bole, sonny hall, sassia call.
1: मम्मी पापा दे वीजे री सुपर वीजा इंश्योरेंस लेनी है ते बंटी बबली दा विजिटर वीजा भी लगवाना है मेरा ते खर्चा ही बड़ा हो जाना है शमी पठल होरा ने तोड़ा खर्चा छोटिया इंस्टॉलमेंटा च बदल देना है वधिया बेनिफिट वाली इंश्योरेंस पॉलिसी वाजिब कीमत ते लेके दिंदे ने शमी पठल सुपर वीजा ते विजिटर इंश्योरेंस दियां बेस्ट डील ले याद रखो इंश्योरेंस एडवाइजर शमी पठल जी दा नाम 416-917-7763 416-917-7763Life insurance, visitor insurance, super visa insurance, critical illness, disability insurance, RESP, travel insurance, convert expensive mortgage insurance to term insurance.

0: क्या बात है नहीं सर जी 9257 हेलो
1: जी हाँ जी नवीद
0: सत्या जी किवें हो
1: ठीक है जी एयर क्वालिटी तो बहुत बैड होगी जी
0: चलो कर देंगे ठीक है
1: देखो
0: अपने चलो फिर भी आप कि दूर है जिथो जिथे अगर लगी है बट फिर भी अपन असर महसूस हो रहा है नॉर्थ बहुत ज्यादा है हांजी
1: हांजी जॉब बंद करनी पेगी राइट वे हाईवे की जॉब लाने उत्ते बड़ा जाम जा
0: चलो ख्याल रखो अपना
1: गाना लाओ जी एक बहुत दिन सोचदा अपना कड़ी मानक घगरा जाया करो तेरा
0: देखो मैं थोड़े टाइम है कोई ना मैं कोशिश करता ठीक है गवर्नमेंट दी एजुकेशन दी ग्रांट्स दी जानकारी सरांश दे रहे ने सो सरांश पहला तो यह दसो एलिजिबिलिटी दसो की है ये जिहड़े फुली गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड कोर्सेज ने देखो गवर्नमेंट तुहानूं पैसे दे रही है ये वापस नहीं करने पैने नॉन रिफंडेबल अपने लिविंग एक्सपेंसेस ले ग्रांट मिल रहे ने सो की एलिजिबिलिटी है
2: हाँ जी सत श्री अकाल जी सारे नु एंड देन अगर आपका स्टेटस पीआर सिटीजन या प्रोटेक्टेड पर्सन हैगा आपकी फैमिली इनकम लेस देन $70,000 है 2024 के एनओए में देन आप एलिजिबल है कहीं भी ओंटारियो में रहते हैं आसान से फुली ऑनलाइन कोर्सेज करें नो एज लिमिट पेंशन पे हैं एलिजिबल है और नो क्रेडिट चेक नो कोलैटरल और 30 से 100,000 की फंडिंग बिना कोलैटरल के बिना क्रेडिट चेक आप अपने अकाउंट में हासिल कर सकते हैं जिसका मेजर पोर्शन आज की डेट में हाफ पोर्शन जो आपकी फंडिंग बनती है उसका पोर्शन नॉन रिफंडेबल टैक्स फ्री ग्रांट्स है उबर ड्राइवर ट्रक ड्राइवर सेल्फ एम्प्लॉयड है ज्यादा बेनिफिट है अनएम्प्लॉयड है और भी ज्यादा बेनिफिट है 2 से 3 घंटे आसान से कोर्सेज करें स्किल डेवलप करें मैनेजमेंट के कोर्सेज करें फुली ऑनलाइन घर के कम्फर्ट से असाइनमेंट से एग्जामिनेशन नहीं है स्केल भी हासिल करें फंडिंग अपने अकाउंट में हासिल करें डायरेक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट
0: वेरी गुड सरांश का नंबर है 437-264-3175-437-264-3175 ते सरांश किन्नी क ग्रांट बन जाती है जिहड़ी कि वापस नहीं करनी पैंदी है कि जे फैमिली ऑफ टू है या फैमिली ऑफ फाइव है
2: अगर फैमिली ऑफ टू में मान के चले रिटायर्ड कपल है या फिर यंग कपल है उनकी 45,000 की फंडिंग बनती है 25,000 तो ग्रांट का पोर्शन है जो रेस्ट है वो लोन है 0% पर 1.5 साल बाद पे ऑफ करना होता है पे ऑफ करना स्टार्ट करना होता है अगर फैमिली ऑफ फाइव है तो 100,000 की फंडिंग बनती है अगर हस्बैंड वाइफ है और 3 बच्चे हैं उनके उसमें से $50,000 तो नॉन रिफंडेबल ग्रांट्स है जो रेस्ट 50,000 है आपने लाइक 10 से 15 साल में पे करना है शुरू में 0% 1 साल तक और बाद में 2.5% साल का ब्याज है सिर्फ बिना क्रेडिट चेक के बिना कोलैटरल के तो आप इस फंडिंग को हासिल करें सिर्फ सैटरडे तक टाइम रह गया है नेक्स्ट एकेडमिक ईयर से गवर्नमेंट ग्रांट्स में ह्यूज कट्स कर रही है नो एज लिमिट

0: में, और लाइक सिर्फ जैसा मैंने कहा सिर्फ थोड़े दिन ही रह गए, उसके बाद लोन आएगा, ग्रांट नहीं आएगी। अभी एनरोल करें, फायदा लें। 437-264-31-75, 437-264-31-75, उन्हें कॉल करें तो एस्टिमेट लो 4372643175। अपने नुकसान ना कराएं, फंडिंग ले जो क्योंकि आपके आस पड़ोस वाले सब लोग ले चुके हैं।
1: वेरी गुड। 437-264-31-75, 437-264-31-75। थैंक यू सुरेश। थैंक यू जी। ओके, सो नाल दी नाल हरमन दा भी नंबर दे, टीम हरमन बत्ता साडी नंबर वन मोर्टगेज ते फाइनेंसिंग दी टीम। अगर मोर्टगेज करवानी है हरमन दा कराओ यार, तुसी बस कहोगे नवी थैंक यू सो मच, ये नंबर दिता 647-685-9000 नंबर है, 647-685-9000 ते तुसी कॉल करनी है हरमन नू 647-685-9000। ईगल ट्रक टायर रिपेयर एंड अलाइनमेंट सेंटर, ट्रकों की रिपेयर, ट्रक का ऑयल चेंज, ट्रक की अलाइनमेंट तुसी एक बार जरूर, या ट्रक के नवे टायर ने ग्रैंड ओपनिंग इन्होंने की है, बड़ा वाला डिस्काउंट दे रहे हैं, साडा बस नाम लै दौ। ईगल ट्रक 10874 स्टील्स एवन्यू ईस्ट स्टील्स अते जेम्स नो पार्कवे का कोर्नर है, लोकेटेड है थोड़े लिए 401 तो बिल्कुल उत्तरनसार, 647-234-6293, 647-234-6293। एक तुसी याद रखना न्यू हाइट्स किचन है दे जसपाल भाजी, ब्रांड न्यू टॉप टॉप टॉप दी किचन, किचन कैबिनेट्स, काउंटर टॉप, वैनिटीज, टीवी दे आले दुआले कोई एंटरटेनमेंट यूनिट हो गए तो न्यू हाइट्स किचन 416-859-1920 मैं भाई नू प्रोमिस किया, भाई दो बोल देखो किन्ने के लगते हैं, बट आ

0: प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करना चाहते हो कि तुसी भी प्रॉफिटेबल आउटकम ले प्रॉपर्टी लग रहे हो फिर फेयर डी रियल्टी रिप्रेजेंट्स आउटस्टैंडिंग फार्म हाउस 28 एकर लैंड विद टू रोड फ्रंटेजेस डबल कार गराज ग्रीन हाउस एंड वर्कशॉप यही नहीं 407-418 हाईवे तो सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पे फॉर बेस्ट इन्वेस्टमेंट कॉल द बेस्ट टीम फेयर डी रियल्टी ब्रोकर ऑफ रैकेट हरदीप पंदेर एंड 905-671-2000
1: You are listening to your favorite radio show Radio Awaz, the voice, Zindabad, Zindabad. For advertising, please call 416-518-3200.
2: ਜੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੋ ਆਲ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ ਐਂਡ ਵਾਸ਼ ਲਿਮਿਟਿਡ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਵਾਸ਼ ਟਰੱਕ ਆਇਲ ਚੇਂਜ ਤੇ ਰਿਪੇਅਰ ਇੱਕ ਹੀ ਰੂਫ ਥੱਲੇ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਫਰਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਇਲ ਚੇਂਜ ਨਾਲ ਟਰੱਕ ਵਾਸ਼ ਸਿਰਫ $45 ਤੁਸੀਂ ਕੈਡ ਦੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਵਿਦ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਟ $850 ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਅਰ ਡਰਮ and rear brake change at $750 and AC recharge is at just $180 so reach out to them call at 905-452-9955 in other address is 71 Stafford Drive Brampton they right now a hiring bhi kar rahe ne je tanu truck mechanic da koi experience hai you can call them their number is 905-452-9955
3: F-150 Ford ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਟਰੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ F-150 ਜਾਂ ਮਸਟੈਂਗ ਜਾਂ ਲਿੰਕਨ ਜਾਂ ਫੋਰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅਨਿਲ ਚੋਪੜਾ ਰੋਹਨ ਚੋਪੜਾ ਚੋਪੜਾ ਬ੍ਰਦਰਸ ਚੋਪੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ 42 ਸਾਲ ਤੋਂ ਟੌਪ ਸੇਲ ਇਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਕਾਰ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲਟਨ ਫੋਰਡ ਤੋਂ ਚੋਪੜਾ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਟਨ ਫੋਰਡ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 416-316-4161
4: ड्राइव कर रहे हो शो नो एंजॉय कर रहे हो कुछ बोल रहे हो
5: ड्राइविंग लाइसेंस
4: नो
5: पुलिस ऑफिसर
4: नो नो
5: ट्रैफिक लाइसेंस
4: नो
5: देन
6: डायमंड इंश्योरेंस दे पवन कौर गिल दा ए मैसेज मोस्ट ऑफ इंटरियंस इग्नोर कर रहे हैं अपनी ऑटो इंश्योरेंस रिन्यूअल या अपने रेट नो चेक कर ले आज ही कॉल करो 30 तो वध कंपनीज नाल काम कर रहे पवन कौर गिल 3 मिनट दे विच 300 तो लेके 1500 तक साल दी इंश्योरेंस कट सकदी है ऑटो होम और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज दी 647-325-9900 647-325-9100 पवन कौर गिल फ्रॉम डायमंड इंश्योरेंस हो
3: जाते हो बहुत सारे पेंटर्स से पेंटिंग कंपनी दे नंबर पर तुसी रियल्टी पेंटिंग नो क्यों नहीं चुनोगे फायर स्टेशन फाइव स्टार होटल्स बिल्डर दे कस्टम कार्स या सरकारी इमारतों नो पेंट कर चुके हैं ना उत्थे तुहाडे घर नो 24 घंटिया दे अंदर अंदर पेंट कर देंदे हैं इन्हां दा रेट इन्हां दी क्वालिटी नो कोई भी मैच नहीं कर सकता 7 साल दे कीते हुए काम दी गारंटी होवेगी फ्री एस्टीमेट लई सुखमन नो कॉल कर सकदे हो 416-816-8400 1-416-816-8401
7: यार आजकल इकोनॉमी बहुत टफ चल रही है ट्रकिंग इंडस्ट्री स्लो है बिल्डर क्लोजिंग्स रुक रहे ने ते कई बिजनेसेस लॉस विच जा रहे ने जिथे सेविंग्स तक खत्म होने लग जांदी है पर कनाडा विच फाइनेंशियल स्ट्रेस दे लई लीगल ऑप्शंस अवेलेबल ने थ्रू द इनसॉल्वेंसी प्रोसेस तुहानू डेट नु प्रॉपर्ली असेस करन मैनेज करन ते सिचुएशन अकॉर्डिंग रिलीफ ऑप्शन समझाण विच हेल्प करदे ने इस प्रोसेस नाल तुसी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन नु कंट्रोल विच ले आ सकदे हो ते अगला सही स्टेप प्लान कर सकदे हो ज्यादा इंफॉर्मेशन लई अज ही कॉल करो 416-518-3200 416-518-3200
8: रियल एस्टेट दी दुनिया विच आओ अपने सुपनियां नु सच कर विखाओ फेयरडील रियलिटी इंक ब्रोकरेज नाल हाथ मिलाओ
9: रियल एस्टेट दियां बारीकियां सिखो ते कंपनी वालों क्लाइंट्स लीड्स भी पाओ
8: फेयरडील रियलिटी इंक ब्रोकरेज नवे एजेंट हायर कर रहे ने
9: अज ही कॉल करो फेयरडील दे ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड हरदीप पंदेर नु
8: 905-671-2000
9: फेयरडील नाल हाथ मिलाओ अपने सुपनियां नु सच कर विखाओ
10: ऑटो ओनर्स क्या आप ज्यादा इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं या फिर नया ड्राइवर ऐड करने के बाद आपका इंश्योरेंस प्रीमियम बहुत बढ़ गया है अगर आपके पास जी या जी टू लाइसेंस है और कनाडा में 3 सालों का इंश्योरेंस एक्सपीरियंस है तो टेंशन मत लीजिए
11: ऑल स्टेट इंश्योरेंस के दीक्षा गुलेरिया को आज ही कॉल करें जो आपको अच्छा प्रीमियम ऑनेस्ट एडवाइस और ग्रेट सर्विस भी देंगे अपनी होम और ऑटो इंश्योरेंस का पैकेज बनवाएं और अप टू 30% तक बचाएं ऑल स्टेट इंश्योरेंस के दीक्षा गुलेरिया 647-656-2810 That is 647-656-2810.

0: Gardner Drive, Brampton. Major intersection, Steeles and Kennedy, 9054512600.
1: ओह यार, बिजनेस का माड़ा हाल होया पे। कितनी तरकीबा लगा चुका पर फिर भी कोई गल नहीं बन रही।
2: निर्बल बाबे ने क्या से कृपा हो जाओगी, नींबू मिर्चा टंगो, पर कृपा तो हो ही नहीं।
3: ऑनलाइन भी मार्केटिंग करके देख ली पर कोई रिजल्ट ही नहीं आया।
4: एदा मतलब तुसी रेडियो आवाज ट्राई नहीं कीता।
5: रेडियो आवाज,
6: रेडियो आवाज रोजाना सवेरे 9 to 10 बजे तक, एवरी सैटरडे 10 to 1 बजे तक, प्राइम टाइम ते। वधेरे जानकारी लई तुसी कॉल कर सकते हो 416-518-3200।

मंथ तक दी पेमेंट भी बनवा सकते हो। सारे ब्रांड्स दी ऑथराइज्ड डीलर्स भी ने मिसेस आगा स्टील दी अप्लायंस जंक्शन। कॉल 905-450-0054 905

0: रात हमें छड़ दिनी आ, पर जनाब चले किथे हो?
1: मैं चलिया स्काईडम ऑटो एंड बॉडी सेंटर, जेड़े कर देने मेरी कार दी केयर, बेस्ट सर्विस ते फुल रिपेयर।
0: ए होई हन स्काईडम ग्रुप ऑफ कंपनीज, जेना दिया जीटीए दे विच चार लोकेशन ने, मेरी फ्रेंड अनु दी एक्सीडेंटल कार भी फिक्स करके नवी बनाती सी।
1: जी हां, कारा दे नाल नाल बसा अते वड्डे ट्रकां दी हर तरह दी रिपेयर अते बॉडी वर्क दा काम भी कीता जांदा है। रेट वास्ते बेस्ट पैकेज प्रोवाइड कीते जांदे ने। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 905-874-9878।
2: बम्बा गया मैं जिते जावां मुंडे कहंदे बम्बा गया।

0: है फॉर द फर्स्ट टाइम इन वर्ल्ड कप फाइनल, फीफा वर्ल्ड कप फाइनल। इंस्पायर्ड कित्थों होए है, NFL दा जिहड़ा सुपर बॉल दी जिहड़ी गेम हुंदी है उहदे च हुंदा ना अद्धे घंटे दी ब्रेक, फिर कोई म्यूजिक कोई शो हुंदा है। सो इस वार इदां होणा है फीफा वर्ल्ड कप दे विच के ग्लोबल म्यूजिक स्टार जिहड़े आ उह अपना जलवा पेश करनगे, गीत संगीत डांस वगैरह होऊगा जिहड़ा अद्धा घंटा होऊगा। सो इस वार फीफा वर्ल्ड कप दे विच हाफ टाइम 30 मिनट्स दा होऊगा। सो फिर उहदे विच म्यूजिक ब्रेक आपां कह सकदे हां के लोग इंजॉय करनगे उस शो नू जिहड़ा ग्लोबल म्यूजिक स्टार्स उहदे विच आउणगे। ते इहदे विच जिहड़े स्टार्स आउणगे उहो काफ़ी जिवें आपां कहिंदे आ नेम फेम वाले आ, जिस जस्टिन बीवर हो गया, शकीरा, मैडोना एंड BTS। सो फिर इहदे नाल नाल कहिंदे आ कोल्ड प्लेस क्रिस मार्टिन भी होणगे। सो बाकी कल नूं आपां शेयर करांगे, होर गल्लां बातां भी करांगे क्योंकि हुण समां ही अपना हो चलिया। ते तुसीं मेरा नंबर नोट करो। एक ना होर भी स्पैशल अज दिन सीगा, समां ही निकल गया। अज जिहड़े शहीद भाई तारू सिंह जी आ उहनां दा अज शहीदी दिन है, सो उहनां नूं भी आपां याद करदे हां।
1: कमाल दा कैसी यार, यकीन ही नहीं होंदा।
2: तेनू इधर ते यकीन नहीं होंदा, तू ए सुन, सेव ऑन एनर्जी वाले फ्री इलेक्ट्रिक हीट पंप ते रहे ने, जे तुहाडे घर विच इलेक्ट्रिक जा ऑयल हीटिंग है।
1: इस गल ते मैनू पूरा यकीन है, ओते इंस्टॉलेशन दा 100% खर्चा भी आप देंदे ने, ते जे तुहाडे घर विच ऑयल हीटिंग है ते ओ ऑयल टैंक भी फ्री च बार कर देंगे, नाले हीट पंप तुहाडे हीटिंग बिल्स 50% तक घटा सकदे ने।
2: तेनू इस सब किवें पता?
1: क्योंकि मैं भी पिछले साल लगवाया है।
2: अच्छा, ओ वेबसाइट ते नाम की दस्सी सी?
1: saveonenergy.ca/eap।
3: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.

0: जब HK Movers का हो साथ, लोकल एंड लॉन्ग डिस्टेंस के लिए टेंशन लेने की नहीं है बात। HK Movers, होम, ऑफिस, अपार्टमेंट्स एंड डिलीवरी, बिग और स्मॉल, वी मूव इट ऑल। वी ऑल्सो शिप कार्स, वी ऑल्सो डू स्टोरेज। 30 years एक्सपीरियंस, वी सर्व विद अ स्माइल। HK Movers, गिव अस अ कॉल। मिस्टर हरमिंदर, 416-524-6704, 416-524-6704।
1: हासल फ्री मूविंग के लिए HK Movers।
2: इस बार गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश का आगमन आपके घर ला रहा है ढेरों खुशियाँ। इन खुशियों का स्वागत कीजिए इंडिया सजावट एंड पूजा हट से श्री गणेश जी के ब्यूटीफुल ड्रेसेस लेकर दुर्बा फ्लावर्स, इको फ्रेंडली स्टैचूज जो हो जाए क्विकली डिसॉल्व इन वाटर। तो इस बार सिर्फ गणेश जी की पूजा नहीं, खुशियों की भी आराधना कीजिए। इट्स ऑल अंडर GTA's बिगेस्ट डिवाइन शॉप, इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 मेलनी ड्राइव, यूनिट 5, ब्रैम्पटन, 905-458-6808।
3: कि तुसी भी अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स नो सुपर वीजा या विजिटर वीजा ते कनाडा लाके आ रहे हो, ते फिर प्लैनेट इंश्योरेंस तो सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर इंश्योरेंस प्लान लाके उन्होंने प्रॉपरली प्रोटेक्शन दे। साड़ी अप्रूवल फास्ट ने, कवरेज तुहाडी नीड के मुताबिक है, ते कॉम्प्रीहेंसिव प्लान है जिहड़ा, ए सारा कुछ तुहानू मिल सकता है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस ते। तुसी मैनू कॉल करो, एदे लई नंबर है 416-524-3535, 416-524-3535, विदेश आबरा फ्रॉम प्लैनेट इंश्योरेंस।

चरण कमल स्यों प्यार, मन तन रता सच रंग, इको नाम आधार, बिखरा रंग कुड़ावया, दिसन सबे शार, हर अमृत बूंद सुहावनी, मिल साधु पीवन हार, वन तिन प्रभ संग मौलिया, सम

कर्म मिलावन हार जिनी सखिए प्रभ पाया हाँ तिन कै साधु बलिहार नानक हर जी माया कर शब

0: हर महीने मैकेनिक नु पैसे दे देंदे हो। ट्रक खरीदे आया मैकेनिक नु गोद ले ले।
1: ओ मैं की करा, ये पुराना ट्रक ता रोज नखरे करता है।
0: नखरे छड़ो ते सिद्धे जाओ निस्को ट्रक सेल्स ते।
2: वधिया हालत वाले यूज्ड ट्रक्स, ट्रक को बेचना होवे या खरीदना, रेट बिल्कुल वाजब लौंदे ने।
0: फाइनेंस दी सुविधा भी उपलब्ध है,
2: मतलब जेब भी सेफ ते घर वाली भी खुश। बस फिर आज ही चलते हैं निस्को ट्रक सेल्स, टोरब्रम डेरी दे नजदीक, 7055 टोरब्रम रोड, मिसिसागा। कॉल 6745589999। ट्रक ऐसे के मैकेनिक भी कहेगा हुन मैं की करा।
3: मस्कोका अंदर 1.5 एकड़ ते 2600 स्क्वायर फुट दी कॉटेज सेल ते आई है। 3 बेडरूम 2.5 वॉशरूम हन। हाई एंड दे फर्नीचर नाल फुली फर्निश्ड है। 2 साल दी नवी कॉटेज $100,000 दी इनकम जनरेट करदी है। 12x30 फुट दा डेक है, प्लस वॉकआउट बेसमेंट भी है। मस्कोका रूम भी फर्निश कीता गया है। पीछे पानी है अते खूबसूरत है। क्लब हाउस बन रहा है जिथे स्विमिंग पूल भी होवेगा। जानकारी लिए कॉल जितेंद्र गंदम 416-265-2222 416-265-2222। July 25 नू ओपन हाउस लगन जा रहा है 1 to 3 बजे तक।
4: मैं क्या किथे जा रही है?
5: 10 बारी क्या पिछो हाक ना मारिया करो। ब्रैम्पटन कैश एंड कैरी चली सी।
4: ब्रैम्पटन कैश एंड कैरी हुन 60,000 स्क्वायर फीट ते मूव हो गया।
6: 100 कैनेडी रोड ब्रैम्पटन, हर तरह दी ग्रोसरी ले पहुंचो। ब्रैम्पटन कैश एंड कैरी 416-700-9100।
7: विजन वैनिटीज ते न्यू शिपमेंट आ गई है। बाथरूम वैनिटीज दे सिलेक्टेड मॉडल्स से भी अप टू 60% ऑफ। कॉन्ट्रैक्टर्स ले स्पेशल प्राइसेस। ए नई नई वैनिटीज दी परचेज ते सिलेक्टेड रेंज ऑफ मिरर्स फ्री। विजन वैनिटीज डिक्सी एंड डेरी दे बिल्कुल नजदीक। कॉल 9056711800 905-671-1800।
8: कंडीशंस अप्लाई।
9: ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਵਣ ਜਾਂ ਪਿਕਨਿਕ ਹੋਵੇ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਹਾਲ 'ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਵੇ ਪਾਰਕ, GTA ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਵੇ ਬਾਹਰ,
10: ਖਾਣੇ ਦਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਵਾਦ ਇੰਡੀਅਨ ਸਵੀਟ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਕੇਟਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਵੀਟ ਮਾਸਟਰ ਐਂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਕਾਰਨਰ ਆਫ ਮੈਕਲੋਕਲਨ ਐਂਡ ਰੇ ਲੋਸਨ, 9054502800।
3: I am Dev Takla and you are not.
11: ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो, मैनुअल जां ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आहे ना रखियो। ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब लो जी, तीजी लोकेशन भी खोलती है, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। आहो जी, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप, 519-622-0660 या quicktrucklube.com। QTL, बिकॉज वी कैन।
12: Ladies and gentlemen, introducing from CHLO AM 530, the number

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दियां सारियां आइटमां डॉलर 475 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट डॉलर 5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165।
1: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस्तों करवांदा यार?
2: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
1: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
2: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
3: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
2: जेड़े लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-500-1509 ते।
3: याद रखो, मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू,
2: 416-509-1509
3: और विजिट insuranceforyou.ca।
4: Kataria Tours and Travels located near 2883 Derry Road, East Upper Airport and Derry, the intersection upper. Tusi cheap flight tickets Nepal de vichu, Toronto to Delhi, Delhi to Amritsar de route options suno chahide ne. Jan tusi visa services Nepal de vichu, puri family vacation upper jaan di soch rahe ne, jithe tuhanu all inclusive vacation packages bhi milde ne. Pahunchna ma ji Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection upper. Call kar sakde ho 905-678-1200. 905-678-1200 Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection open.
5: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस।

0: ਅਡਾਪਨਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
1: ਫਾਰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-725-2551 416-725-2551
2: Canada Day Study Visa, Express Entry, Canadian Express Entry, Spousal File, Parents PR, Super Visa, Nanny, Work Permit, Farmer, Investor, ya Self-Employed di File. Gal ki, Immigration di har problem da solution lain lai, Community de jaane pehchane ate tajrabe kar Immigration Consultant, Gary Virk nu milo.
3: Koi case refuse ho gaya ya appeal te chala gaya, hove Immigration da koi bhi masla, hamesha yaad rakho ikko hi na, ate ikko hi tha. CIC Immigration, hune hi call karo, 416-456-6161
4: कनेडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई
5: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है
6: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस डिसेबिलिटी इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-455-3381 ते 416-457-3381 ते
4: नाली जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाओगे हुने ही सिमराज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-457-3381 416-457-3381
7: ਦੋਸਤੋ ਦੇਸ ਪਰਦੇਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚਲੋ AM 530 ਤੇ 24/7 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਦੇਸ ਪਰਦੇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ www.desparadesradio.com ਜਾਂ www.desparadestv.com ਲਾਈਵ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲਾਈਵ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਵਾਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ IPTV ਬਾਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ ਪਰਦੇਸ TV ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ 24/7

0: Imagine having a Muskoka getaway that works for you, even when you're not there. Discover a rare opportunity at an exclusive open house in Huntsville, where peaceful surroundings, year-round enjoyment, and endless outdoor adventures meet proven investment potential. This exceptional property offers 3 bedrooms, modern finishes, and lake access nearby. Curious to learn more? Visit the open house Saturday, July 25th from 1 till 3, or contact Jay Gundam, Remax Gold Realty, Inc. at 416-265-2222.
1: Kito Hanu electrician din lor hai, sanu high-risk electrical te call karo. High-risk kyo? क्योंकि साड़े को लाइसेंस नहीं है तो इसी इलेक्ट्रिकल परमिट नहीं लेंगे जाने कि तुसी पक्का नहीं कह सकते कि साड़ा काम कितना कु सुरक्षित या कानूनी है पर एक गल पक्की है कि जदों भी असीं आवांगे असीं तुहाडा टॉयलेट जरूर वरतांगे इसलिए हुणे कॉल करो असीं वादा करदे हां कि तुहाडे घर नूं आग नहीं लगेगी शायद
2: अपने परिवार की रक्षा करो सिर्फ लाइसेंस इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर ही वरतो और यकीनी बनाओ कि ईएसए परमिट हासिल करन होर जानने लई highlicense.ca ते जाओ इलेक्ट्रिकल सेफ्टी अथॉरिटी वल्लों एक सुनेहा
3: कमाल दा कैसी यार यकीन ही नहीं होंदा
4: तिनू इधर ते यकीन नहीं होंदा तू ए सुन सेव ऑन एनर्जी वाले फ्री इलेक्ट्रिक हीट पंप ते रहने जे तुहाडे घर विच इलेक्ट्रिक जा ऑयल हीटिंग है
5: इस गल ते मैनू पूरा यकीन है ओ ते इंस्टॉलेशन दा 100% खर्चा भी आप देंदे ने ते जे तुहाडे घर विच ऑयल हीटिंग है ते ओ ऑयल टैंक भी फ्री च बार कर देंगे नाले हीट पंप तुहाडे हीटिंग बिल्स 50% तक घटा सकदे ने
4: तिनू ए सब किवें पता
5: क्योंकि मैं भी पिछले साल ए लगवाया है
4: अच्छा ओ वेबसाइट ते नाम की दस्सिया सी
5: saveonenergy.ca/eap
6: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
7: ਚਰਖਾ ਵਾਲੇ ਗੱਭਰੂਆਂ ਨੂੰ
8: ਚਰਖਾ ਕੱਤਦੀਆਂ ਤੇ ਪਿੰਗਾਂ ਝੂਟਦੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੂੰ
7: ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਭੰਗੜੇ ਅਤੇ ਗਿੱਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛਣਕਾਰਾਂ ਨੂੰ
8: ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ
7: ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ
9: The views and opinions of the guests and sponsors are solely theirs and